0: downward, no wheel.
1: That's right.
2: तो नमस्ते, KZMU मोआब कम्युनिटी रेडियो से बोल रही हूँ दीपाली परमार. 90.1 और 106.7 FM. और मैं जब अपने घर होती हूँ पुणे में, भारत में, मैं www.kzmu.org ऑनलाइन यही रेडियो सुन सकती हूँ. और आप मुझे ये रेडियो पे सुनिए, शुक्रिया.
3: एंड ऑन 90.7 FM इन सैन जुआन काउंटी, यूटा.